जिसे हम यमन के बारे में जानते हैं, वो है ख्यातनाम गायिका, जिनके सुरों में गान सरस्वती का निवास है।

दोस्तों, आज जो राग यमन राग राग यमन यमन राग पर हमें मार्गदर्शन करेगी, जिनसे हम यमन के बारे में जानेंगे।